0: Serious Gorka Radio.
1: DFB's Gorka Radio कार्यक्रम सुनो ले बिहारी बहुत सा श्रोता यो समय मौसेरी को साथ बहुत सा र कार्यक्रम बाबा बने फिर भी नहीं कई सोचना ये समय में राखी हालो तो आपको समय छह बार राय को सब अरे को लागे बने यो से 19th वार्षिक भेला होना गए रहेगा साथे बीबीक्यू कार्यक्रम जून से तारों हो समाज यू के लिए आए जा रहा गरी रहेगा सब बीबी ना आकर्षण हो रहेगा सा इस टीम में रावेरी जी ऑल्डरवुड लेजर सेंटर बाहर गए रहेगा सा ऑल्डरशॉट मैप डेट से 8th of August 2026 सैटरडे को दिन दूसरे को समय 12 बजे देखिए बेलुकी 10 बजे सब होना गए रहेगा सा सो यही अनुसार जो जो तबायर अनुसार एंजॉय करना सकनुनी से ये समय अगले लाइव में बार दिखा रहेगा आवाज में मीठो गीत नज़िक एंजॉय करना होला